0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ा शानदार। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बस एहो जी कृपा बनी रवे साडे सारयां दे उत्ते। प्रोग्राम सरब रेडियो तुसीं सुन रहे हो, ते नाल दी नाल किसी नूं वी मॉर्गेज दी भाल है, फर्स्ट या सैकेंड मॉर्गेज तुसीं लभ रहे हो या सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट दी लोड़ पै गई है, ते GNE मॉर्गेजिस दे मयंक पटनागर जी नाल तुसीं जरूर गलबात कर सकते हो। बड़े लंबे समय दा एक्सपीरियंस इन्हां दे कोल है, ते बहुत वधिया नॉलेज रखते हैं मॉर्गेज दी इंडस्ट्री दे विच। ते संपर्क नंबर 647-702-2023 647-702-2023 मयंक पटनागर जी।

0: और ये ला सर्वदा नाइन रख बंद ना करके जाई दूर ना तू तू तू
1: क्या बात है, आज तुम भी इकट्ठी तीन बार पीछे बज गई है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नजारा आ गया, कॉल करते रहा करो।
0: हां नहीं नहीं करया सर, मैं आ गया। हां थैंक यू,
1: चलो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू जी, सत श्री अकाल। बिल्कुल जी, नंबर 905-673-3337 905-673-3337 ते गलबात हो रही है। ते नाल दी नाल व्याहवां दे विच शादियां फंक्शन दिवाली अगे आनी है, लेडीज़ नूं हुंदा वी यार शानदार कपड़े मिल जाण सानू, जिहड़े वधिया होण, जिहड़े देखण नूं घट मिलण, है ना, बड़े डिजाइनर वेयर जे। ते तुसी सुख डिजाइनर बुटीक ते जरूर गलबात करो, कॉल करो, जां इहनां दा टिकटॉक हैंडल है sukh.designer.boutique, देखोगे बड़े शानदार कपड़े है, सूट, लहंगे, प्लाजो, पजामी, लोंग ड्रेसिज तुसी लैनी है ते सुख डिजाइनर बुटीक ते गलबात करो। ते नंबर है 647-203-3365 647-203-3365। ते सुनदे हां एक बड़ा शानदार गीत, सवाल तुहाडे लई ओही सेम ही गलबात जे आपां कर रहे हां, खुश रहण दा केड़ा मंत्र है, खुश रहण दा केड़ा फॉर्मूला, किदां खुश रहा जा सकदा है। कहिंदे जो सुणदा नहीं उहनूं समझाणा नहीं, हुण जिहड़े सुणनी नहीं गल, तुसीं समझाई चलो, उहदा ध्यान ही किसे होर पासे है, बंदा फिर निराश हुंदा, यार मैं ते इहनूं चंगी गल समझाई जांदा, इह अगे उह सुणदा नहीं पिया, उदों वी फिर बंदा निराश हुंदा, पर जिहड़ा नहीं सुणदा छड्डो परे, समझाणा नहीं ते भी खुश रहा जा सकता है। बाकी तुहाडे कोल पुछ रहे हां 905-673-3337 प्रोग्राम सर्ब रेडियो ते गाना राजवीर जवंदे दा शानदार गीत पटियाले वाला।

सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आपको बजट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905 4000 कीजिए।

मौजूद प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आपको चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5530 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

0: of nastiest abroad in top samosa and sweet factory at all leading grocery stores.
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चार इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आपने उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में जाते हैं या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-9052 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

जी प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। तो अब आपके लिए जो हिंदू भाई बहन है उनके लिए अभी पितर पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं वो पितर पक्ष में को मनाते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो होता है पितृपक्ष, ये अभी अक्टूबर के कुछ दिनों तक, अक्टूबर 8 तक मेरे ख्याल चलेगा, और फिर इस हफ्ते आपके लिए पूर्णिमा, जो स्पेशल पूर्णिमा थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा थी और मैंने उसकी मून जो होता है उसकी काफी अच्छी अच्छी फोटो खींची। मतलब एक मैंने मून की फोटो खींची, उसमें एक नीले रंग का छोटा सा कोई चीज आया, और फिर जब मैंने दोबारा लिया उसका फोटो तो वो चीज नहीं आई, लेकिन उसमें वो नीला सा कुछ आया है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपका सभी का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आपने प्लान किया होगा, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे आप, आपको शॉपिंग करनी है, घर के कितने सारे काम करने हैं, और फिर कल संडे का दिन तो फिर वापस काम पे जाने की तैयारी में लग ही जाता है, ऐसे ही है ना। तो अब आपके अगर अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, दिवाली आने वाली है, आप किसी को गिफ्ट लेके देना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अगर आप सोच रहे हैं मूव होने की तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एचके मोबाइल बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को ये सेवाएं देते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, बहुत सारी टीम्स हैं उनकी, आपका सामान को बाजार से पहुंचा देते हैं। तो एचके मोबाइल को आज ही कॉल कीजिए, 416-452-6704 एचके मोबाइल। और लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, आपके यहाँ अब मास्टर कोलिजन डिपो वाले खुल चुके हैं, तो आपको बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं, और मास्टर कोलिजन डिपो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब इलेक्शन अक्टूबर 26 को है, तो आपको जहां न्यागरा निवासियों के लिए थॉरल में जो खास करके रहते हैं कि साद महमूद वहां पे काउंसलर की रेस में है, तो पहले बहुत सालों से वो अपनी कम्युनिटी को, बहुत हर कम्युनिटी को यहाँ इस इलाके में वो मदद करते आ रहे हैं। तो आपको देखना होता है ये जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं कि कौन अपनी आपकी कम्युनिटी को अच्छे से अपना टाइम दे पाते हैं, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप वोटिंग डालेंगे। वोटिंग आपका राइट है, आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मंदी का गाए हुए कोई गीत सुनाया जाए आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स हैं, क्लासिकल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं मन्ना डे जी के। तो मेरी लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कि जिंदगी को लेकर के जैसे भी हम दुनिया में आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। और जब भी ये बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं, फिर आपको ये समझ में नहीं आता, आपका दिमाग बौखला जाता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएं क्या करें, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जिसने आपको इसमें डाला है वो जरूर आपको निकाल लेगा भाई, सही है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं।
गाना भी है इसी तरह का।

0: जीवन कहीं भी है, जीवन कहीं भी नहीं है, आज से तुमका चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। चलेगा तो चलने है, मंदिर को कर से है, तो चलना
1: होगा
0: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आदि से तू आगे चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। चलेगा तो चलने गुना है, मंदिर को करते है तुमको चलना होगा।
1: जी हाँ, तो ये राजेश खन्ना की आवाज थी, तो कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और आपको टीवी लेना है या फिर आपने अभी दिवाली आने वाली है तो टीवी आपको किसी को अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को लेकर के देना होगा तो आप टॉप चॉइस की जो स्पेशल्स का देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045। और अब अगर आप मूविंग होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फिक्र करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो आपके लिए टॉप चॉइस आपके लिए एचके मूवर्स करके देते हैं। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आज ही आप उनको कॉल कीजिए 416-452-4416-452-6704। हैमिल्टन वाले हो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਜੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਮੀਰਾ। जिनको लोगों को नहीं पता आपको बता दें कि आजकल पितर पक्ष चल रहा है। तो आइए, चुनरी के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आइए आपको ये जो गाने हैं ये भी राजेश खन्ना के ऊपर ही फिल्म के ऊपर, उन दोनों जो स्क्रीन पे राज कर रहे थे लोग वो यही थे, आशा पारेख थी, धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी और फिर और ये

हाँ तो इनको नजर का जो भी इनका चल रहा है करने दो, आप घर संसार में वापस आ जाइएगा। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आगे बढ़ते हैं, आइए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और साथ में आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो इसी से आपको हम आगे लेके बढ़ते हैं इसी तरह। अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहिए, 905-799-0045। अगर आपने किसी तरह की भी पूजा का सामान चाहिए, अभी पितर पक्ष चल रहा है तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आपके लिए इंडिया सजावटन पूजा हट पे आपको सारा सामान मिलेगा। और फिर अगर आपने खाना ऑर्डर करना है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली की पार्टी के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया पे, न्यूली रेनोवेटेड। और जानकारी के लिए 905-814-1730 पर कॉल करो, 9058141730 पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है, तो इस बार जो स्पेशल जो फुल मून है, बड़ा है और स्पेशल है, तो चाइनीज लोग इसमें बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, तो मून केक बनाते हैं और इसका आनंद समझते हैं, तो बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं इसको। तो आइए इसी के बारे में आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर का।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कि तेरे जैसे बहुत देखे। तो आशा पारेख और सुजीत कुमार के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से सार। तो अब अगर आपने कार खरीदनी है तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमिल्टन वाले हो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबी टी रॉक कोले फाटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीमां तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण दी पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर वी दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी BBT रॉकले फाटो हमिल्टन आओ सानूं सिर्फ ये दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बॉब BBT रॉकक्लिफ आटो हमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, BBT रॉकक्लिफ आटो हमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट लोकेशन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, BBT रॉकक्लिफ आटो। आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। तो ये भी गाना आज हमने आशा पारेख जी के ही गाने सुने सुनाए हैं आपको, तो उम्मीद रखती हूँ आपको भी पसंद आ रहे होंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि उस दौर में उनके ही मूवीज देखी हैं, गाने सुने हैं, तो हमारे जमाने के वो थे एक्ट्रेस, तो गाने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि

0: प्रोग्राम पसंद आ रहा प्लीज आप बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो आपको जो मैं गाना सुनाना चाह रही हूँ मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ, तो एंजॉय द सॉन्ग
1: राजा माया।

सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल.ca पे जाइए। आपको बजट करवाने के लिए 905 400

नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल हैं। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चार, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आपने उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में जाते हैं, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-9052 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

ஆதனம் பத்குண்டலம் ஆஞ்சநேயம் ஓம் நமோ பகவதே விசித்திர வீரஹர்மதே பவய காலானல பிரபாத்ருதா பவத்ருதேஹாயோ அஞ்சனி கர்ம சம்பூதாய தாயக்ஷராசதோ கிரகபந்தனாயோ பூதகிரக பிரேதகிரக பிசாசகிரக ஷாக்கினிகிரக டாக்கினிகிரக காக்கினிகிரக காமினிகிரக ब्रह्मराक्षसग्रह चोरग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बंधय बंधय सर्वमुखं बंधय बंधय राजमुखं बंधय बंधय सभामुखं बंधय बंधय शत्रुमुखं बंधय बंधय सर्वमुखं बंधय बंधय लंका प्रसाद भंजवजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून्भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः श्री विचित्र वीर हर्मते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हर्मन्

जी प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। तो अब आपके लिए जो हिंदू भाई बहन है उनके लिए अभी पितर पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं वो पितर पक्ष में को मनाते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो होता है पितृपक्ष, ये अभी अक्टूबर के कुछ दिनों तक, अक्टूबर 8 तक मेरे ख्याल चलेगा, और फिर इस हफ्ते आपके लिए पूर्णिमा, जो स्पेशल पूर्णिमा थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा थी और मैंने उसकी मून जो होता है उसकी काफी अच्छी अच्छी फोटो खींची। मतलब एक मैंने मून की फोटो खींची, उसमें एक नीले रंग का छोटा सा कोई चीज आया, और फिर जब मैंने दोबारा लिया उसका फोटो तो वो चीज नहीं आई, लेकिन उसमें वो नीला सा कुछ आया है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपका सभी का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आपने प्लान किया होगा, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे आप, आपको शॉपिंग करनी है, घर के कितने सारे काम करने हैं, और फिर कल संडे का दिन तो फिर वापस काम पे जाने की तैयारी में लग ही जाता है, ऐसे ही है ना। तो अब आपके अगर अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, दिवाली आने वाली है, आप किसी को गिफ्ट लेके देना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045। अगर आप सोच रहे हैं मूव होने की तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एच के मोबाइल बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को ये सेवाएं देते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, बहुत सारी टीम्स हैं उनकी, आपका सामान को बाजार से पहुंचा देते हैं। तो एच के मोबाइल को आज ही कॉल कीजिए, 416-452-7704, 416-452-6704 एच के मोबाइल। और लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, आपके यहाँ अब मास्टर कोलिजन डिपो वाले खुल चुके हैं, और तो आपको बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं, और मास्टर कोलिजन डिपो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब इलेक्शन अक्टूबर 26 को है, तो आपको जहां न्यागरा निवासियों के लिए थॉरल में जो खास करके रहते हैं कि साध महमूद वहां पे काउंसलर की रेस में है, तो पहले बहुत सालों से वो अपनी कम्युनिटी को, बहुत हर कम्युनिटी को यहाँ इस इलाके में वो मदद करते आ रहे हैं। तो आपको देखना होता है ये जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं कि कौन अपनी आपकी कम्युनिटी को अच्छे से अपना टाइम दे पाते हैं, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप वोटिंग डालेंगे। वोटिंग आपका राइट है, आपको जरूर इसको करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मंदी का गाय हुआ कोई गीत सुनाया जाए आपको, ठीक है ना। तो लेट्स देखते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स हैं, क्लासिकल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं मन्ना डे जी के। तो मेरी लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कि जिंदगी को लेकर के जैसे भी हम दुनिया में आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। और जब भी ये बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं, फिर आपको ये समझ में नहीं आता, आपका दिमाग बौखला जाता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, क्या करें, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जिसने आपको इसमें डाला है वो जरूर आपको निकाल लेगा भी, सही है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं,

चले चले रे मारा चले चले रे तारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चंदना होगा।

0: जीवन कहीं की चहल का नहीं है, आज से तुम्हारा से चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। चलेगा तो चलने गिरा है, मंदिर को तेरे से गिरते गिरा है, तुमको चलना होगा।
1: मुझे भी यहाँ आता हूँ, आता हूँ रो गए और देख कर इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर हैं। मां जी ये कहते और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत, मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाम का इंतजार है, किसी माझी की जरूरत है।
0: नाथ तो क्या बह जाए किनारा, बह जाए किनारा, बड़ी ही देख समय की है सारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चले चले रे सारा चंदा, चले चले रे सारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तू बात करता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। चलेगा तो चलने गिरा है, मंदिर को कर देगी तेरी निगाह, तुझको चलना होगा,
1: तुझको
0: चलना
2: होगा। जी हाँ, तो ये राजेश खन्ना की आवाज थी, तो कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और आपको टीवी लेना है या फिर आपने अभी दिवाली आने वाली है तो टीवी आपको किसी को अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को लेकर के देना होगा तो आप टॉप चॉइस की जो स्पेशल्स का देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045। और अब अगर आप मूविंग होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फिक्र करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो आपके लिए टॉप चॉइस आपके लिए एचके मूवर्स करके देते हैं। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आज ही आप उनको कॉल कीजिए 416-452-7604 हैमिल्टन वाले हो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1,00,000 डालर तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840, ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਸੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਮੀਰਾ। जिनको लोगों को नहीं पता आपको बता दें कि आजकल पितर पक्ष चल रहा है, तो आइए चुनरी के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आइए आपको ये जो गाने हैं ये भी राजेश खन्ना के ऊपर ही फिल्म के ऊपर, उन दोनों जो स्क्रीन पे राज कर रहे थे लोग वो यही थे, आशा पारेख थी, धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी और फिर और इधर

हाँ तो इनको नजर का जो भी इनका चल रहा है करने दो, आप घर संसार में वापस आ जाइएगा। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आगे बढ़ते हैं, आइए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और साथ में आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो इसी से आपको हम आगे लेके बढ़ते हैं इसी तरह। अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहिए, 905-799-0045। अगर आपने किसी तरह की भी पूजा का सामान चाहिए, अभी पितर पक्ष चल रहा है तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आपके लिए इंडिया सजावटन पूजा हट पे आपको सारा सामान मिलेगा। और फिर अगर आपने खाना ऑर्डर करना है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली की पार्टी के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है न्यू एंड ब्रिटानिया पे, न्यूली रेनोवेटेड। और जानकारी के लिए 905-814-1770 पर कॉल करो, 9058141730 पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है, तो इस बार जो स्पेशल जो फुल मून है बहुत बड़ा है और स्पेशल है, तो चाइनीज लोग इसमें बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, तो मून केक बनाते हैं और इसका आनंद समझते हैं, तो बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं इसको। तो आइए इसी के बारे में आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर।

प्रोग्राम पसंद आ रहा प्लीज आप बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपकी की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो आपको जो मैं गाना सुनाना चाह रही हूँ मैं आपके लिए

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मांग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com। Helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
2: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने जी, उन्हां नूं निघी जी आया आखदे, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल हर एतवार वाले दिन बन जांदा है। 12 to 1 रामस पंजाबी वीकेंड शो ते 1 to 2 सुणिया जांदा प्रोग्राम नजरिया। इन्हां प्रोग्राम्स दे दौरान साडे नाल स्टूडियो 'च गल्लबात करन वास्ते टैलीफोन नंबर होंदे ने जी 416-233-7368 जां 8297 416-233-7368 जां फिर 8297 ते अपनी गल्लबात हो सकती हुंदी है। मैं तुहाडा होस्ट मनजीत सिंह गेल। प्रोग्राम तो बाद विच मेरे नाल कोई भी गल्लबात तुसी करनी है ते फिर 416-669-1379 ते कर सकदे हुंदे हो। 416-669-1379 मेरा परसनल नंबर है। इसे नंबर ते प्रोग्राम दे संबंध विच जां रियल स्टेट संबंधी कोई भी जानकारी लैनी होवे ते लई जा सकदी हुंदी है। सानू 1-2 बैडरूम दी जे कॉन्डोमीनियम अपार्टमेंट थोड़े पास वाटरलो यूनिवर्सिटी के आस पास अगर तुसी वेचना चाहते हो तो जरूर संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। और एक बड़ा शानदार ऑफिस स्पेस 2nd फ्लोर ते, ये भी ट्रेंडमेड ड्राइव ते ही है जी, जो मैं पहला एडवरटाइज करता रहा, वो साड़ी हुण ऑलरेडी रेंट ते चढ़ चुकी है। सो एक अनदर यूनिट, बड़ा शानदार यूनिट है भी। अगर तुसी अपना कोई भी प्रोफेशनल ऑफिस सैटअप करना हो, क्लोज टू ड्रू रोड एंड ट्रेंडमेड ड्राइव वाली साइड नूं पैंदा। सो ब्रैमली एंड ड्रू रोड का इंटरसैक्शन नेड़े लगता है। सो अगर इस एरिया दे विच अपना कोई ऑफिस तुसी सैटअप करना, ये लिस्ट नहीं असी कीता, अगर तुसी देखना चाहते हो तो फिर मेरे नाल संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की जरूरत है, कोई 6000+ स्क्वेयर फीट का एरिया हो, उसका प्लस नाल उहदे पार्किंग स्पेस जिहड़ी तकरीबन 8 to 10 ट्रेलर पार्क होने की सुविधा होनी जरूरी है। वो कितने भी ब्रैम्पटन, मिससागा, बोल्टन, कैलडन के किसी भी हिस्से दे विच जां मिल्टन वाली साइड नूं भी अगर थोड़े पास है तो वो भी साढ़े नाल तुसीं संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। 1 4-bedroom 3 washroom का फ्री होल टाउन हाउस जो कि बोवे ड्राइव एंड हाईवे 410 के नेड़े रौना स्टोर के बिल्कुल नेड़े है जी। सो उसनों भी तुसी खरीदना होवे इन फ्यूचर तो वो भी सानू तुसी संपर्क कर सकते हो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। 416-669-1379 इस वेले जुड़ चुके हो प्रोग्राम नज़रिया दे नाल। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसी प्रोग्राम दे दौरान स्टूडियो करनी होवे ते 416-669-1379 ते माफ़ करना जी, ये मेरा परसनल सैल नंबर है। स्टूडियो कॉल करने वास्ते टैलीफोन नंबर होंगे ने 416-233-7368 जां 8297। अज एक कैंपेन लॉन्च होने जा रही है जो कि हरसिमरन सिंह जो कि रीजनल एज ए रीजनल काउंसलर कैंडीडेट वार्ड 9 ते 10 तो, बलजिंदर निहाल सिंह जी जो कि सिटी काउंसलर कैंडीडेट के रूप के अपनी अज कैंपेन लॉन्च कर रहे ने। 3 बजे तो लैके 5 बजे तक के 2 घंटे का प्रोग्राम होना है। नंबर 2 ऑक्शन लेन ब्रैम्पटन जो कि क्वींस मैन्योर इवेंट सेंटर है उत्थे होने जा रहा है। गौरबे ड्राइव एंड क्वीन स्ट्रीट का मेजर इंटरसैक्शन बनता है। सो तुसी उत्थे पहुँच के 3 बजे तो लैके 5 बजे तक के 2 घंटे का प्रोग्राम होना है। सो इन्हां वीरां नूं तुसी जिथे हल्लाशेरी दे सकते हो उन्हां दी सपोर्ट कर सकते हो, प्लस अपने क्वेश्चन जरूर उन्हां तों पुछणे ना भुलना। सो लेकिन तुसी पहुँचना जरूर है।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: News Desk. Locally covered, nationally connected.
1: Afternoon, welcome to Dave Tarla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे विच नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। हरप्रीत सैनी जी भी आ रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करावांगे। जस्ट स्टे ट्यून। अपने कोई भी गलबात करनी है नंबर ने 416-677-0609, 677-0609। जिस तरह जानकारी दी थी पिछले दिन कि चार मुंडिया डिपोर्ट किया गया है इथों, जिहड़े कोई ना कोई क्राइम किया, टोटल 100 तो वध डिपोर्ट कर दिते ने। पिछली बार जिहड़े डिपोर्ट किए थे पलविंदर सिंह, जसमेर सिंह, साहबजोत ते अमित जो बाजवा, इन्हां नूं डिपोर्ट किया है। वैसे जे देखा जाए मई 9-2022 की गल है, बीसी दे विच कपल सी जिहड़ा घर दी सफाई कराउंदे सी किसे तों, जिहड़े सफाई करन गए सी उन्होंने ही उन्हां नूं कुट कुट के मारता, थोड़े बहुत जिहड़े पैसे सी ओह लै के भज गए, बाद तां फड़े गए सी। और जदों भज्जे ने उन्हां विच गुरकरण सिंह ते खुशवीर तूर ते अभिजीत सिंह ने, ते इन्हां दे फर्स्ट डिग्री दे मर्डर लगे ने, ते उन्हां दा परिवार कह रहा है कि काश इन्हां नूं पहलां ही डिपोर्ट कर दिता गया।

0: मेरा जी मेरा बिजनेस नहीं चलता बाबा जी, बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती बाबा जी, प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी, मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तातले नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई, स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
0: मेनू याद आ गया,
2: शुक्र है तू कोई बदाम बदूम खाया कर,
0: की भला
2: की
0: एहो ही भी एक ना साडी लंडी मझ भी हुंदी,
2: ले लो
0: की होया,
2: मैं कंगणा दी गल कर रही,
0: तू कंगणा दी गल तों गल करनी, कंगण पा ला तू, ले ले
2: ओहो, तू ही तां शुरू होया सी वी ओ कंगणा जड़ी रणौत वाली,
0: आहो ओहो फिल्म वाली,
2: हां
0: ओदी गल सुन ला,
2: सुना
0: ओदा नाम है, अखबार च पढ़िया कहंदी मेनू ना जेड़ा फिल्म दे विच हुंदा कैमरे वाला,
2: हां हां
0: जेड़ा लैडा वाले हुंदे आ,
2: हां हां
0: जेड़ा इको टोपी पाके वाला नी वाला, काट दो काट दो वड दो वड दो,
2: ओ वड दो वड दो नी, ओ कट कहंदा हुंदा, डायरेक्टर हुंदा ओ,
0: कट मेनू पता ऐ अंग्रेजी स्कूल गए, कट नी हुंदा कटना वडना,
2: हां मतलब ओ उन्ना सीन ओथे मतलब खत्म, ओनू कहंदे कट, तू छड्ड ओ गल्लां, तू मेनू अगे गल दस,
0: ओ कहंदी वी मेनू ना बहुत वधिया लगदा ओ,
2: हैं
0: हां कहंदी जेड़ा टेक्निकल हुंदा ना काम, टेक्निकल
2: ओ टेक्निकल हुंदा,
0: टेक्निकल
2: टेक्निकल अच्छा तुहाडा टेक्निकल हुंदा जो भी हुंदा, तू मेनू गल सुना,
0: कहंदी भी ओ ना मेनू बहुत ही नजारे वाला लगदा, कहंदी बहुत नजारा आउंदा ओदे च,
2: आए हाए
0: पर मेनू ऐ नहीं सुन लगी
2: की
0: ओदे वाल जिवें खड़े जे हुंदे जिवें करंटिया लगदा हुंदा, कहंदे ऐ तां नहीं मतलब लाइटमैन नूं कहंदी ओ वीर बण के बत्ती नूं हत्थ ला लैंदे, हां जी
2: तू पींदा खांदा तां नहीं,
0: मैं जी पीना भी है, मैं खाना भी है जी,
2: की
0: पीना मैं, पानी है जी, चाह है जी, दूध है जी, जूस है जी, लस्सी है जी, और जेड़ी जी पीने वाली मिल जाए जी,
2: तू सवेरे की पी के आया मेनू ए दस,
0: सवेरे तां जी मैं मतलब जी पानी पीता जी, लस्सी पीती, चाह पीती, दूध पीता जी,
2: तेरा टेढ़ा टोया
0: नहीं, टाइम टाइम ना पीता जी, आया थोड़ा भी मतलब एदा थोड़ा,
2: मैं के शायद कट्ठा ही कहंदा होना,
0: नाले तोड़े वाली चीज नहीं पींदे जी, ओदा तूनू आदत है जी, मैं तां कई बार गया भी कुड़ियां नूं चंगी नहीं लगदी, तू ना पिया कर,
2: केड़ी चीज
0: ओही जेड़ी तू पीनी है,
2: मैं केड़ी पीनी है,
0: असी कद दसीए भाई,
2: दस दे दस दे
0: भाई, कोल्ड काफी पींदी है इहदी चंगी नहीं हैगी,
2: क्यों नहीं चंगी, इन्नी गुड हुंदी है,
0: काफी गुड हुंदी है, साडे पिंड जिन्ने व्याह हुंदे ओदे तत्ती करके दिंदे आ काफी, जे ठंडी दे देना, पिछले मेरे व्याह सी भूआ दे मुंडे दा, ओदा ठंडी कॉफी दे दी, मेरे फफड़े गलों फड़ लिया कॉफी वाले नूं,
2: पता की
0: कहंदा साला सवेर दियां तारां ला के ढूं ढूं कराई जांदा, कॉफी मंगी हुण ठंडी दे दी,
2: पता की चक्कर आ, तू ठंडी नहीं पींदा ओदा ही नतीजा इह आ,
0: ते मैं फ्रिज रख के पी लिया कर, साडी नूं भावें तूं मैं कॉफी दी बर्फ जमा के पा लिया कर, विच सासी की लैण देना,
2: ठीक आ मैं तां तैनूं नतीजा दस्या आ,
0: नतीजा तू मेरा नतीजा मेनू क्यों दाता, नतीजा आपे मेरे घर दे जाके स्कूलों पूछ लैणगे, जदों मेरा नतीजा आउंदा हुंदा सी ना, फिर दो दिन मैं नहीं घरे आउंदा हुंदा सी,
2: क्यों
0: फिर छत्रां दा डर हुंदा सी ना,
2: अच्छा चल मेरी गल नहीं सुननी तू,
0: तेरी गल क्यों सुननु, तू गड्डे ते लद्दी आं,
2: हुण सुनावां कि ना
0: गाउणा,
2: नहीं गल्लां
0: ते गाउणा कौण सुनाऊं फिर,
2: ओ गाउणा ला दिंदे पहले गल तां कर ला कोई मेरे नाल,
0: तू गल्लां ला दे नाले गाउणा सुना दे,
2: की
0: ऐ नहीं हुंदा,
2: एदां नहीं हुंदा, पहला मेरी गल मुकूगी तो फिर गाना लगूगा,
0: ते गल मकाया तू पहला, मैं बैठा इथे,
2: ओ नहीं
0: तेरे मकाउणी है गल,
2: तेना
0: ए मेरे ना केड़ा जमीन वंडनी है तू,
2: हाय हाय मेरे हाथ च उने इट आ जावे ना ओही तेरे वगाती मारा सिर,
0: एदा ना करी फिर मैं सिंगर बन जू,
2: क्यों
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਟ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਸੁੱਟ ਦੋ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਆ,
2: ਆਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ,
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰੇਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਲੱਲ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ,
2: ਹੈਲੋ
0: ਦੂਜਾ ਲੱਲ

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: भाई बन के की आई हैं? लाल झग्गा पाया भाई साहब, तितलियां वाला उत्ते सिर ते क्लंप जा लाया, की चक्कर की है?
3: अंडरलाइन
2: कर दे भी अखां हन, तू अखां ते अपर लाइन क्यों की थी?
3: अंडरलाइन भी ध्यान ना देख,
2: नहीं अंडरलाइन होनी नजर नहीं आ रही, जिनी अपर लाइन नजर आ रही।
3: ओ हेलो, इनू आईलाइनर कहंदे आ।
2: ये मेनू क्यों लग रहा है भी रात किते सुत्ती नहीं जां फिर पीती ज्यादा हो गई, सवेरे उगड़दी नहीं सी, इस करके तू जानबूझ के सुरमे ना बनाईया कि मतलब पता लगे भी ये भाई साहब अखा ही नहीं।
3: हर कोई तेरे वर्गा हुंदा
2: की? तेरे वर्गा मैं किदा काजल ला के
3: आंदा? तू बस कर, इह तां
2: बाकी गल्लां छड्डियां, इह दस मेरे तितली वाली मतलब आज सिर ते क्लंप जा खलाया,
3: मैं कह शायद मैं उड़न नहीं लग जा।
2: ओए तितली दा लाउण दी वजह ना, जे तू छत्तर मुर्ग दा लाउंदी फेर भावें कोई ना कोई गल बनदी। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ।
4: ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ.com ਤੇ ਦੇਵਤਾਤਲਾ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼
5: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ।
6: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ
4: ਫੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਵਤਾਤਲਾ 416-677-0609 416-677-0609
5: Culture of Punjab.
6: Culture of Punjab.
2: अच्छा देख, गल्लां बहुत हो गई इधर उधर दी, काम की गल ते आई, काम की गल है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रोफेशन एंड यू नो एंड आई नो दैट के यू नो
3: बट दे डोंट नो
2: बट दे पीपल कनो ना यस ऑफ कोर्स
3: व्हाट
2: दैट तरीका इज के तुसी मेनू आज ये दसोगे कोई नवी तरह दे मतलब प्रोफेशंस दसो के जिन्हें मैं ज्वाइन कर सकता हूं।
3: ओके
2: एंड दैट प्रोफेशन वुड बी वेरी गुड फॉर माय पॉकेट।
3: अच्छा,
2: बिकॉज आई लाइक द वेरी मच डॉलर इन माय पॉकेट।
3: अच्छा,
2: बिकॉज ऑलवेज व्हेन आई पाइंग अ थिन माय पॉकेट आई ऑलवेज फाइंड खाली माय पॉकेट।
3: मतलब मेरे नाल ज्यादा बेटर कौन समझ सकता है?
2: चल ठीक है,
3: हाँ,
2: तू बड़ी मतलब अंबानिया दी थी,
3: तू मेरा मुंह ना खला, तेनु मैं फिर तेरा उधार चेते करा देना।
2: व्हाइट हाउस सेक्रेटरी लगी रही तू,
3: तेनु की पता, तेनु कभी व्हाइट हाउस दे मोर दी नंबर दित्ता? तेनु
2: व्हाइट हाउस दा जेड़ा मतलब की नु कहंदे हुंदे जेड़े वो बूटे बाटे लगे हुंदे पत्ते चुगड़दे ना रख, इन्ने लै जेने चोके।
3: नहीं नहीं, तेनु दा मामा साहब हाथ जोड़ के अंदर सद्या भी, गुरप्रीत जी आओ चाह पी के जायो,
2: कितना जराना मेरा,
3: तू जा
2: पता किन्ना जराना,
3: वैसे ना
2: इतनी पुरानी सांझ है साडी, मैं तुम की दसा?
3: एक मिनट, वो तो की सुनाना होना है, दिल को बहलाने के लिए ये क्या अच्छा है गालिब, ये ख्याल अच्छा है गालिब, आ गया याद, आ गया याद।
2: ख्याल तो अच्छा है, तू जिदा गालिब साडा शेर बिगाड़ने ही ना, उन्होंने डांग लैके तेरे दुआले आ जाना।
3: आई एम सॉरी।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।